0: आय रूपं अस्तंभनः।
1: नवंत पाठ ही करना, नवंत नहीं करना। सो जेड़ी साध संगत जी, ये तोयंग दा भी आया, वो भी जदों जेड़ी जेड़ी मात्रा लगी वो आप संगत ने विशेष ध्यान भी रखना, जिवें तोयंग दे टिप्पी लगी है जाइए तो ऐडे नूं टिप्पी बोले जाएगी। इत्थे नवंत ते नवंत नहीं कहना, नवंत द्वारं पीत रहतं, रहतं पाठ बोला बोलना। वाय रूपं अस्तंभन है, अस्तंभन है, कई ऐदा पढ़ते अस्तंभन है, अस्तंभन है नहीं करना, अस्तंभन है। नह पाठ की आवाज आनी चाहिए है, हाहे नूं दुलावां नहीं लगन देनियां।

0: गोबिंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजन आसनं।
1: हां जी, नानक पाठ ते साध संगत दी जम कलाउणी जिदा उच्चारण कीता, गोबिंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक, इथे जम कला के नानक भगवंत भजन आसनं।
0: किरपंत हरियं मात तत् ज्ञानं बख्शीदे बुद्धा कुशल थानं।
1: हां जी, किरपंत हरियं, कई इथे मेरे को किरपंत पाठ पोथियां दे विच छापिया गया है, मेरे को किरपंत पप्पे दी टिप्पी तत्ता नाल जोड़ के लिखिया, पर नहीं, किरपंत हरियं मात तत् ज्ञानं बख्शीदे ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਠ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ ਕੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਐੜਾ ਬਖਸ਼ੀਦ ਦੇ ਬੁੱਧਾ ਕੁਸਲ ਥਾਨੰ।

0: है, जस्य सिमरण हृदंतर है, आरोग्यं महारोग्यं विसिमरते करुणामय है।
1: विसिमरते, इथे सिमरते ही उच्चारण करना, सिमरते नहीं कहना। सिमरते भी पाठ होता है टिप्पी दे नाल, ते बबे दी सिहारी नूं अगेतर ला के विसिमरते।
0: रामणं
1: मय है, ए भी उच्चारण मम्मे नूं, मम्मा इडी नूं सिहारी ऐड़ा हाहा।
0: रामणं केवलं कीर्तनं सुधर्मं देह धारण है, अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संत ना त्रिप्यते।
1: नानक पाठ ते विश्राम लाउणा, अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संत ना त्रिप्यते, त्रिप बोल के ते पप्पे नूं सिहारी ऐड़ा तत्ते नूं ला।
0: सहनशील सहनशील संतं सम मित्रस्य दुर्जन है, नानक भोजन अनेक प्रकारेण निंदक आवध होए उपतिष्ठते।
1: प्राकृण प्राकृण निंदक आवध होए उपतिष्ठते, पाठ इकट्ठा ही है, उप बोल के तिष्ठते उच्चारण उपतिष्ठते।
0: तिरस्कार नह पवंत मान भंगन है, शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन है।
2: नानक भोजन अनक प्रकारेण, दोबारा पढ़े।
0: नानक भोजन अनेक प्रकारेण निंदक आवध होए उपतिष्ठते, तिरस्कार नह पवंत मान भंगन है, शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन है।
1: पोहंत पाठ भी, शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन है।
0: गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है, नानक से प्राणी सुख बासन है, सेना साध समूह सूर सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहं तन निम्रताह
1: निम्रताह। सेना साध समूह सूर अजितं, इथे विश्राम लाउणा। सन्नाहं ए भी सस्से दी टिप्पी, जे सन्नाहं कहांगे सस्से दी टिप्पी छुट जावेगी। सन्नाहं तन निम्रताह पाठ इकट्ठा ही करना।
0: आवदह गुण गोबिंद रमणं,
1: आवदह आवद है नहीं कहना, ते आवद जे आवद कहांगे फिर दद्दा लगेगा, सो इथे उच्चारण है दद्दा। आवद है ते दी ते हाहे दी पूरी आवद है, एदा उच्चारण दी आवाज आनी चाहिदी। आवद है गुण गोबिंद रमणं, ओट गुर शब्द कर चरमण है।
0: ओट गुर शब्द कर चरमण है, आरूढ़ ते अश्वरथ नाग है, बुझंते प्रभ मार्ग है।
1: अश्व सस्सी नूं मूकड़ ऐड़ा जिवें उच्चारण कीता गया है, आरूढ़ ते अश्वरथ नाग है, बुझंते प्रभ मार्ग है।
0: विचरते निर्भयं सत्र सेना, तायंते गोपाल कीर्तन है।
1: तायंते तदेनु सिहारी, तदेनु कन्ना ईड़ी नू सिहारी, तायंते तदेनु कन्ना ते ऐड़े नू टिप्पी तत्ते नू ला तायंते।
0: जितते विश्व संसार है, नानक वस्यं क्रोध पंच तस्कर है, मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है, ततः कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है। नच विद्या निधान निगमं, नच गुणज्ञ नाम कीर्तन है।
1: गुणज्ञ गगे नु सिहारी ऐड़ा, नच पल पोले उच्चारण करने, नच विद्या निधान निगमं, नच गुणज्ञ नाम कीर्तन है।
0: नच राग रतन कंठं, नह चंचल चतुर चातुर है, भाग उद्यम लब्ध्यं माया नानक साध संग खल पंडित है। कंठ रमणीय राम राम माला, हस्त ऊच प्रेम धारणी।
1: माला पाठ ही करना, कंठ रमणीय नाने नु बिहारी ऐड़ा, राम नाम माला हस्त ऊच, हस्त ऊच पाठ जेड़ा है इस बंधक दे विच उचारना, हस्त ऊच प्रेम धारणी।
0: जीह पणिजो उत्तम सलोक उदरण नैन नंदनी।
1: जीह पणिजो राणे दी सिहारी ला के, ए पाठ पणिजो इकट्ठा ही है, कुछ सरूपां दे विच भाण जो एदा अलग अलग छापिया गया है, पर इकट्ठा पाठ है। जीह पणिजो उत्तम सलोक उदरण नैन नैन नंदनी।
0: ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਅਸਯ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਣ ਹੈ ਕੂਕਰ ਹੈ ਸੂਕਰ ਹੈ ਗਰਦਬ ਹੈ ਕਾਕ ਹੈ ਸਰਪਨ ਹੈ ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ।
1: ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੂਕਰ ਹੈ ਸੂਕਰ ਹੈ ਗਰਦਬ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਹੈ ਗਰਦਬ ਹੈ ਕਾਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਸਰਪਨ ਹੈ ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ ਪਾਠ ਪੋਲਾ, ਖਲ ਹੈ ਪਾਠ ਵੀ ਪੋਲਾ।
0: ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਭਜਨੰ ਹਿਰਦਿਅੰ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਜਮ ਦੂਤਨ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲੱਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲੱਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨ ਹੈ ਨਚ ਦੁਰਲੱਭੰ ਭੋਜਨੰ ਬਿੰਜਨੰ ਨਚ ਦੁਰਲੱਭੰ ਸਵੱਛ ਅੰਬਰ ਹੈ।
1: ਸਵੱਛ ਜੇ ਛੱਛੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਸਵੱਛ ਅੰਬਰ ਹੈ।
0: ਨਚ ਦੁਰਲੱਭੰ ਸੁਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾਤ ਬਾਂਧਵ ਨਚ ਦੁਰਲੱਭੰ ਦੁਰਲੱਭੰ ਬਨਤਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ ਨਚ ਦੁਰਲੱਭੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਵੀਣੰ ਨਚ ਦੁਰਲੱਭੰ ਚਤੁਰ ਚੰਚਲ ਹੈ ਦੁਰਲੱਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ।
1: ਲਬਧਿਅੰ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੱਦੇ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਈਏ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ।
0: ਜਾਤ ਕਤ ਹੈ ਤਤ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ ਸਵਰਗ ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਲੋਕ ਹੈ
1: ਪਿਆਲ ਪੱਪਾ ਇੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਲਾ ਪਿਆਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਤ ਕਤ ਹੈ ਤਤ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਤ ਹੈ ਜਤ ਹੈ ਤਤ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨੀ ਜਾਤ ਕਤ ਹੈ ਤਤ ਹੈ ਪੋਲੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਲੋਕ ਹੈ।
0: ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪਿਅਤੇ ਵਿਖਿਆ ਭਯੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਖਾ ਸਵਜਨ ਹੈ ਦੁਖੰ ਭਯੰਤ ਸੁਖਿਅੰ।

0: ममं सीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते
1: लिप्यते ही उच्चारण करना पपे नुसारी एडे दे नाल लिप्यते
0: नह शीतलं चंद्र देव है नह शीतलं बावन चंदन है नह शीतलं शीत रुत्तेन नानक शीतलं साध स्वजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है
1: निर्वैरण है ते ज्ञानं गगे नुसारी एडे नु कन्ना नन्ने नु टिप्पी ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्मल निर्वैरण है
0: दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख बेवर्जित है
1: बब्बे नु अगेतर ला के सारी समेत बेवर्जित है
0: भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है
1: पिछे मम्मे नु करना ये नु करना जेड़ा है माया ही उच्चारण करना जिवे एदा उच्चारण माया मम्मे नु करना इडी नु सियारी एडे नु कन्ने दे नाल पूरा माया ही उच्चारण करना हांजी
2: पिछे वालियां पंक्तियां दे विच सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्या थे
0: उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणुक है खट लक्षण पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन है अजापो गंत कंद मूलं बसंते समीप केहर है
1: अजा पाठ पोला ही करना अजा नहीं कहना जा होर किसे ढंग दे नाल अजा कहिंदे बकरी नूं अजा पोगंतं पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहरह केहरह पाठ इकट्ठा ही करना
0: तत्र गते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते
1: तत्र गते पाठ संबंधक करना तत्र गते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते
0: छलं छिद्रं कोट बिघनं अपराधं किल बिखमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं मृतो जन्म प्रमंत नरक है अनेक उपावं ना सिद्ध्यते
1: हां जी मृतो मम्मे नु सहारी चरना चरारा मृ ते तत्ता ऊड़े नु औंकड़ फिर औंकड़ दा जेड़ा चिन्ह थले लगा होया ओदे करके मृतो पाठ ही करना
0: निर्मलं साध संग जपंत नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित प्रत है

0: आप जसंग मिटंत सत पुत्र है, सिमरताब्य हृदय गुर मंत्रण है, प्रीतम भगवान अचुत नानक संसार सागर तारण है, मरणं विसरणं गोबिंद है, जीवनं हर नाम त्यावण है, लभणं साध संगेण नानक हर पूरब लिखण है, दसन बिहून पुयंगं मंत्रं गारुड़ी निवारं
1: पुयंगं पबे नु सियारी एड़े पबा इड़ी नु सियारी एड़े नु टिप्पी गगे नु टिप्पी पुयंगं जिवें उच्चारण किया गया है मंत्रं गारुड़ी निवारणं निवारण निवारं
0: व्याध उपाड़न संतं नानक लब्ध कर्मण है, जाथ काथ रमणं शरणं सर्वत्र जीयण है, तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन है, चरणार बिंद मन विध्यं सिद्ध्यं सर्वकुशलन है, गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है, शुभ वचन रमणं गवणं साध संगेण उदरण है, संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते, वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उधारं बडभागी नानक को तारं सिमरणं गोबिंद नामं उधरणं कुल समूहण है, लब्ध्यं साध संगेण नानक वडभागी पेटंत दर्शन है, सर्व दोख परं त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतन है।
1: जिहड़ियां दो बिंदियां लगियां इह हाहे दी तरह आवाज देणगियां जिवें उच्चारण कीता है ज्ञानी जी ने, सर्व दोख परं त्यागी, परंग बोल के त्यागी पाठ इकट्ठा ही है पर परंग बोल के त्यागी बोलना, सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतन है।
0: लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिख्यण है, होयो है होवंतो हरण
2: परण, जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया दो बिंदियां नूं इसे ही तरह फाहे दे सहत उच्चारण करना बसरंग बसरगा कहा जाता है। बसरगा जिवें महल्ले मम्मा लिख के ते उहदे पिछे भी लगियां हुंदियां ने ये बसरगा। हाँ जी,
0: होयो है होवंतो
1: साध संगत जी, जिवें ना लड़ीवार सरूपां दे विच पंगतियां विच डंडियां लगियां होईयां, कई पंगतियां आप जी वेखोगे छोटियां ने कई वड्डियां ने, उहदा कारण ये है पदछेद सरूपां दे विच जिहड़ा साध संगत जी जदों पदछेद होए अखरां दी गिणती दे हिसाब दे नाल शब्द दी चाल दे हिसाब दे नाल उह डंडियां ला दित्तियां गईयां, पर उह शब्द जिहड़ा है उह डंडी विच्चों कढ के अखरां नूं जोड़ना पवेगा। सो जिवें जे आपां लड़ीवार तों करदे होईए पदछेद ते आप जीआं कोल जिद्दां आप जी पढ़ रहे हो इदां ही लिखिया होया है, जिवें इत्थों ज्ञानी जी पढ़ रहे जां इधरों ज्ञानी जी लड़ीवार तों पढ़ रहे हन, लड़ीवार ते जदों विचकार डंडियां आ जांदियां जदों पाठ कंठ हुंदा फिर आपां इकट्ठा करके उस नूं पढ़दे आं, इही संथ्या है इही उस्तादां दे पढ़ाई जाती विद्या है। जेकर साध संगत जी असी ए चीजा ना होन सानू पता ना लगे भी वह विचकार जड़ियां डंडियां फिर पखर ही नहीं कई बार जुड़दा जिवें ध्यान रखना पैंदा है। सो इस ध्यान रखना इन्हां शब्दां नूं जिहड़ियां शब्दां दे जोड़ डंडियां तो अगले ते पिछले अखर का जोड़ बन के शब्द बनता होवे वह शब्द याद रखने चाहिए। हाँ जी,
0: होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण है, साधु सतम जाणो नानक प्रीत कारणं, सुखेन बैन रत्नं रचनं कसुंभ रंगण है, रोग सोग वियोगं नानक सुख ना सुपन है, फुनहे महल्ला पंजवा इक ओवंकार सतगुर प्रसाद, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती।
1: साध संगत जी ए सतगुरु गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जदों मौ पिंड दे विच साध संगत जी जिहड़ा फगवाड़े दे कोल है उत्थे जा के व्याह करवाउण वास्ते माता जी दे नाल गुरु जी दी बरात गई, उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जीआं दी साली उहने सच्चे पातशाह जी नूं मजाक कीता। सो उहदे मजाक दा वाहिगुरु दे मिलाप दे नाल गल्लां जोड़ करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जीआं ने उहनूं इह उपदेश दे के सारी गुरु घर की जिद महिमा भी साध संगत जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब की गुरु रामदास महाराज जी की नगरी की महिमा भी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने करके अपनी उस साली नूं ते सारे साध संगत जी गुरसिखा नूं उपदेश दे के बख्शिश की है।
0: ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖ ਤੁਹਾਰੀਆ ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ

0: कथा कीर्तन सरवण करते ने क्योंकि उन्होंने हिरदे दे विच परमात्मा नूं मिलन की तांग पैदा हो गई है। ये कृपा है सतगुरु जी की। हाँ जी,
1: जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे तिस बणिया हब सीगार साई सोहागणे हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराईया हरिहा जा कर आया कंत ता सब किछ पाईया आसा इति आसक आस पुराई है।
2: आसा इति आसा पाठ बोला इति थोड़ा जा कस के ते अगला पाठ आस के एदा भी छपया मिलता है पर संपर्दा दे विच आसक पाठ इकट्ठा पढ़ाया जांदा आसा इति आसक आस पुराई है।
1: सतगुर भय दयाल ता पूरा पाई है मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हरे हां सतगुर भय दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत त्याया
2: बेअंत ते विश्राम लागे
1: कहो नानक बेअंत बेअंत त्याया।
2: हां जी ठीक है।

0: ना जानी है।
1: मरम पाठ ही करना मरम नहीं, मरम ना जानी है।
0: गाहक गुनी अपार सो तत् पछानी है। चित है चित समाय ता होवे रंग घना हारे हां।

मित्रंत अजंत सतरं दृणंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमणं।

0: आराधनानक हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियों विचों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान हौमें एहा जात है हौमें कर्म कमाए हौमें एही बंदना फिर फिर जौने पावे। हौमें दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में। और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और ओ अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होने रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुड़े पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। ये रोग बंधन दा कारण बनदे ने रोग दुख का कारण बनते हैं और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थों का अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है और शक्ति सता ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रभुता के मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जो बनवंत होवे या जो बन दी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालत पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पन की सीमा तक ले जाता है, पर जो बन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचा देच है, विचारा देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,
0: हम बड़े कहु कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी। कह रविदास सभे नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे।
1: इति सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन, हम बड कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ना नासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होता है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होता है, क्योंकि अवगुणा के आसरे ते अहंकार नु अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। ये गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना बेद। इकद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहन। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत दा कोई बोध नहीं, किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन। सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेडे। तू है कि हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी। और किया तू हड्डियां का मान, जोबन जवानी का मान, हड्डियां का मान, मांस का मान, मिंज का मान और खलड़ी का मान। इस तो अलावा और है कि एक आया तो इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर देने कर्पूर बहुत सुगंधा पर्श मानक देहं मलिनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदे आ स्पर्श करदे आ मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। है कि दुर्गंध खून मिंड मांस कलड़ी अज्ञानी एवें तन का अहंकार करता है। जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार धनवंता होए क्या को गर्वे जा सब किस तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कित उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन और तन उसकी देन है। ये दिमाग उसकी देन है और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है वसीला ते परमात्मा है। पर धन का अहंकार सता प्रभुता इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा का सिंघासन चाहिए। दान का अहंकार ज्ञान का अहंकार सेवा का अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई है बनाई जाता है बनाई जाता है बनाई जाता है। और गुणा के आसरे से बैठ के एक प्रसन्न बड़ा आता है क्योंकि जगत तो जस मिलता है जगत तो माण मिलता है। वो माण इस दे अहंकार नू होर वधांदा है होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है फिर धन का त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग का अहंकार सता कोल है सता का अहंकार सता का त्याग कर देता है। हुण त्याग का अहंकार ऐसा अक्सर देखण नूं मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है उस त्याग का अहंकार अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने आ अहंकार बैठ जाता है। दान का सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी भगवान आके बैठे निरंकार आके बैठे अहंकार आके बैठ जाता है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे रहा है, रसना दे नाल जप दे रहा है, आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है ओदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार दावा कीता सी हरनाथ कुछ ने, मैं परमात्मा कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा कौन होंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नू भी मनन नू तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिक है और हर एक का माण मैं हो जावा, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए, इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है तू है तू है तू है तू है, अहंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नू मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। तू है तू है तू है, इस वृत्ति ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है, भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच जिदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ते तू ते मैं दोवें इकों सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान हाँ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। ते मैं ते तू दोए कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हाँ। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हाँ मैं हाँ, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी किरिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं, बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम का कहना है अज राह चनार, अज राह चोनार कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होगे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद और इमामद न कुनद, ये किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो नमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ने आ मस्जिद दे छी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे छी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है, पर जो पहले ही मस्तक देते असवार होके बैठा है शायद उसनू मखलूक दे कदमा दे भी जो है था ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठन की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही होंदे, सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है, कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ना गरूर का सर नीचा, आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है, अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है, पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नूं भी अपना सिंघासन बिठा बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है।
0: तीरथ बरते अरदान कर मन में धरे।

तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण दा कारण बनदा है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। हे जन्म मरणं मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी के मुंह ना निकलता है, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतने ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करदा है, ना करके दसना चाहुंदा है मैं तैनूं रोक सकदा, मैं तेरे कम नूं रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना, हां कहना ही भुल गया है। हां कहने विच इन्हों अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, ता भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसे दुश्मनी बढ़ते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारिया नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसदी है, इक सज्जन सब सज्जना, इक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लैंदा है, कि एक नाल सज्जन

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वज देता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन इन्हां

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: बार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: अष्ट नित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: सात संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: सात संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जंजाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त

रोग रोगे नमस्तं सनानं नम मंत्र मंत्रं नम जंत्र जंत्रं नम इष्ट इष्टे नम तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तोल निवासी समस्तोल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओगहर्ता परम परम परमेश्वरं परोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जल है थल है पीत है पे है प्रभु है जू है आदेश है पेश है पुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्माने समस्ति निदाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चारपट शांत वह प्रसाद।

चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने।

पवित्र परथी स आदि स अदर स अकर स भगवती छंत प्रसाद कथते क्या छे जो देस है क्या भिज भेस है क्या गंज करम है क्या भंज भरम है क्या भिज लोक है क्या आदित सो क्या क्या वधूत वर्ण है क्या बेभूत करण है क्या राजंग प्रभा है क्या धर्मंग तुजा है क्या शोक वरण है क्या सर्वा भरण है क्या जगतंग कृति है क्या छत्रंग छत्री है क्या ब्रह्म

सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं योगतः सर्वं मुक्तः रसावल छान्तः परसाद नमो नरकनाश सदैवं प्रकाश अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे तरभंगी तरकामे नरभंगी स्वरूपे।

सांत रूपे नम इंद्र इंद्रे नम इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी तरकाले अनंगी अकामे एक अचरी छंद

नमस्तल परनामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामं बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी स्वतर्मं बेपूते सदा साचदा नांद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब बेपूते गजाय बगनी में हरियं करियं करिमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भूते स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं विपूते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे।

आप जिया दे पवित्र स्वरूप दे प्रकाश करन दी सेवा करदे अमृत गुरबाणी दा जाप करदे समुचिया सेवावां निभाउंदे होईयां बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां दी खिमा बख्शो जी अगे तो समत बख्शीश करो जी पावन बाणी दा भाव संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सुरत शब्द दे नाल जोड़नी संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल पैटावां दर प्रवान करनी सिखी सिद्ध

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचै तुद आख है लख करोड़ सचै सवतान सचै सवजोर सचे तेरी सिफत सचे साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला
1: वड्डी वड्याई ना वड्डा नाओ वड्डी वड्याई ना सच ने आओ वड्डी वड्याई ना नेचो थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई कुछ सब पाओ वड्डी वड्याई ना पुछना दात वड्डी वड्याई ना पे आप नानक कार न कथनी जाए किता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विवास एक न हुक्म समाए लै एक न हुक्म करे विनाश एक ना भाने कट लै

ज्ञानी नचे वाजे वाग रूप रे सी गा रुचे कुके वादा गावे जो दाका विचार मूर्ख पंडित हिकमत जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मुगे मुक्त द्वार जति सदावे जुतना जान है।

वाहे गुरु जी की फतेह। करण कारण पतित पावन भगत वशल कृपा निदान जागत जोत चवर शतर और तख्त के मालक सतगुरु जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सतगुरु नाम बाणी के बोहत कल जोकी ओर सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी आंदी अपार रहमत मेहर दा सदका है। अमृत वेले सतगुरां दे हजूर बड़े प्यार नाल पहुँच के गुरु के दर्शन और गुरु की गोद दा आनंद माण रहे हाँ। ये बड़े भागां दी निशानी है भाई, जिनको कृपा करत है गोबिंद ते सत संग मिलात, जिन्हां ते वाहिगुरु कृपा कर देवे उन्हां नूं अपनी सत संगत विच मिला लैंदा सतगुरु कृपा करके तरस करके। गुरमुख नाम दान इसनान अमृत वेले दीआं दातां बख्श के सतगुरु महाराज जी ने निहाल किया है। अमृत वेले अपने सोहणे दरबार विच प्रकाशमान हो के पवित्र दर्शन अलाही हुक्म फरमान किया है। नितनेम उपरंत सिमरन आसा जी की वार दा कीर्तन समाप्ति गुरु चरण आशीर्वाद दे भले दी अरदास और गुरु महाराज जी ने दाराई संगत नूं अलाही हुक्म फरमाया है। शुक्र गुरु का, इस समुचियां सेवावां सतगुर ने तरस करके अपने दर कर दे सेवक सत्कार योग सिंह साहब ज्ञानी मनदीप सिंह जी तिना दे ताई बख्शिश की हंसा सिंह जी। सतगुर ने अपार रहमत की है, कुछ समा हुण गुरु की गोद विच बैठ के सच्चे पातशाह महाराज जी दे पवित्र हुक्मनामे दी विचार ज्यों बुलाए त्यों बोली है, या आप बुलाए सोए ज्यों बुलाए त्यों बोली है, कुदरत कौन हमारी। सच्चे पातशाह मेहर करन, रसना करांगे पवित्र प्यार नाल सारी संगत बोलो जी सतनाम।

सम्मान योग गुरु रूप साध सिंह जी हो फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने अनंत रूप ने और हर पहलू दी अपनी अपनी विचार है। धर्म दी दुनिया विच कर्म दी बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इस नूं ही गुरबाणी दी रोशनी विच पढ़न दी समझण दी सोचण दी विचारण दी कोशिश करदे हां। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती। कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसके फैसले नूं उसके इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहिंदे ने वह अटल है, उसका न्याय अटल है, वो आप सच है, उसका न्याय सच है। एक गल वखरी है कि दुनिया विच जिथे इंसाफ मिले सारे अरब विच ईरान अफगानिस्तान ते भारत विच उसनू अदालत कहिंदे ने। अदालत अदल कहिंदे ने इंसाफ नू, अदालत इंसाफ दा घर अखरी अर्थ ये बनते ने। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे, अदालत जिथे

यदि समझदे च गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है, ना गुरु दी अजमत दा पता, ना गुरु दी महानता दा पता, ना गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ दे च नहीं है होवेगा परमात्मा है, परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोमे च है, होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी सिमरती दे च नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम देच परमात्मा, मेरी सिमृति देच नहीं। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषा ने आख्या है, याद करो, चेते करो। संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावा शब्दां नूं, असी ईश्वर नूं गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते, भुल गए, भुलिया क्यों, समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहते हैं दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु दी जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन दी समझ नहीं, इनू परिवार दी समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी, इनू निरंकार दी समझ नहीं है, नहीं है। इदा व्यवहार दसदा है, इदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा दी समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने जन्म ते हो गए, ते हुण मैं ए भी अर्ज करा, जन्म बच्चे दी तरह हुंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे महान रूहां दा जन्म भी होया है, जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां बुढ़ियां दी तरह जन्म होया है। चीन दे च कहिंदे ने लाओत से जिहड़ा संत होया, कहिंदे ने बुढ़ियां दी तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी, जन्म तो दूरदृश सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी, तुसीं ते जमदिआं ही ब्रह्म ज्ञान। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर दा जन्म होया, शरीर दे नाल नाल धर्म दा जन्म होया, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन, ते गुरु अमरदास जी महाराज दा सिंघासन गोविंदवाल साहब दी गल है, चढ़न दी कोशिश पे करदे सन, उपर तखत ते चढ़न दी कोशिश पे करदे सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ए गुरु नानक दा तखत है, ये तीजे गुरु नानक दा सिंघासन है, इस ते बैठन दी कोशिश ना करो, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे हैं, बालक गुरु अर्जन देव जी, इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न दी कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक दा सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लेके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया दोहता बाणी का बहुता, ये ते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, ते धुर दरगाहों बैठे होया, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, इति प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनियां नूं परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। इति बहुत है।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
4: इस नु खरीदन जा वेचन ले तुहानू चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लिए काम करे जिस ते तुसी भरोसा कर सको जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
3: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
4: सो हर तरह दी रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नू
3: 604-351-5111 ते कॉल करो 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

मन बेचैन है, चिंतातुर है, दुखी है, चेहरा दसदा है, अखां दसदा। मन खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, चेहरा दसदा है, पर तन नूं चोट लग गई है, कोई जख्म, कोई पीड़ा मन महसूस करदा। तन दा प्रभाव मन ते पैंदा है, मन दा प्रभाव तन ते पैंदा है। पर मैं फिर अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तन नूं भोजन चाहिदा ही चाहिदा है। और ए भी मैं अर्ज करा, चूंकि हवा तो बिना जीवना एक सेकंड भी औखा है, इस वास्ते प्रभु ने आम बनाई है। कोई मनुख हवा कमाण वास्ते एक शहर तो दूजे शहर नहीं जांदा, अपने घर तो बाहर नहीं जांदा, एक मुल्क तो दूजे मुल्क नहीं जांदा। ते प्रभु ने पानी दी भी बारिश कीती हुई है, दरिया भी चलाए हुए ने, पर रोटियां दे दरिया नहीं चलते, रोटियां दी बारिश नहीं आती। ए भी मैल्स करते हैं, एक कमाणी पैंदी है, पकानी पैंदी है, एदे दरिया नहीं चलते, एदी बारिश नहीं आती। तन भोजन दा पुतला है, हवा दी तरह, पानी दी तरह, ए भोजन आम क्यों नहीं बनाया प्रभु ने? इस वास्ते मनुख दे राही कुछ विकास होवे, ए भोजन इस तो कुछ करवावे। रेलां, मोटरां, गड्डियां बनिया ने, सड़कां बनिया ने, बिल्डिंगां बनिया ने, दो रोटियां बनवा रही ने, और कौन बनवा रहा है? इन्नी जिहड़ी हलचल है कौन करा रहा है? भोजन करा रहा है, रोटी करा रही है। जे किधरे रोटियां दी भी बारिश आउंदी, रोटियां दे भी दरिया चलदे, ते दरियावां दे कंडे मनुख पिया रहना सी, एवें ही सुता ही रहना सी, 24 घंटे कख नहीं करना सी। इतना जो विकास होया है मनुख तो, ए भोजन ने कराया। सब भोजन दा विकास है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बहुत वड्डा व्यापारी है, यकीन जानो सब भोजन दा विकास है, और कुछ भी नहीं है। भजन ने भी बड़ा विकास कराया है। कोई फकीर है, कोई संत है, कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई दार्शनिक है, कोई चिंतक है, कोई भगत है, कोई जोगी है, कोई सन्यासी है, कोई उदासी है। इतना लंबा चौड़ा पसारा भजन ने कराया, मन दी भुख ने कराया। मन विच भजन दी भुख ना आउंदी ते कौन जोगी, कौन संत, कौन भगत, कौन सन्यासी, कौन उदासी, कौन सन्यासी बनना सी, किसने बनना सी, किसने फकीर बनना सी? भजन दी भुख ने संत पैदा कीते, भगत पैदा कीते, जोगी पैदा कीते, सन्यासी पैदा कीते। भोजन दी भुख ने इंजीनियर पैदा कीते, डॉक्टर पैदा कीते, लॉयर पैदा कीते, व्यापारी पैदा कीते, कारोबारी पैदा कीते। बड़ा विकास होया, बहुत विकास होया। गहराई नल लेना जरा। हुण दूसरा नुक्ता मैं पेश करन लगा,